नमस्कार अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 22 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, भद्रपदा शुक्ल पक्ष एकादशी, 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय होगा 6:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:22 पर।

पांच तत्वों के हिसाब से हमारे शरीर में कोई भी कमी बेशी होती है तो हम सजग होकर उसके लिए कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इतना बड़ा अभाव आत्मा के लिए परमात्मा के रूप में, इतना बड़ा अभाव इस मन में नेकी का, प्यार का, खलुस का, इसे इंसान महसूस ही नहीं करता है, जिसके ऊपर सारा धर्ममदार लोक और परलोक का टिका हुआ है, वो इंसान को महसूस ही नहीं होता।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 3। आज के मेहमान हैं नेहा धाकड़, प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप।
1: हम सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज मैं था रहते रूबरू हूँ कार्यक्रम घर परिवार में। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त दीपक कश्यप। आज हमारे मेहमान है नेहा धाकड़। नेहा जी, थारा स्वागत है FM 90.0 MHz पर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, जो आपने मेरे तो ये मौका दिया और मनु यहाँ बुलाया। मेरा नाम नेहा धाकड़ा और हम फतेहपुर गांव में रहा, और जो मेरी स्टडी है वो मैंने प्लस टू नगला स्कूल, जो मेरे गांव के थोड़ी दूर था, वहां से करी। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपनी मास कम्युनिकेशन ते गवर्नमेंट PG कॉलेज अम्बाड़ा कैंट ते करी। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा कराया PG DGMC मास कम्युनिकेशन का ही, पंचकूला गवर्नमेंट PG कॉलेज सेक्टर 1 ते। उसके बाद फिर मैंने PT की, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश।
1: तो नेहा जी, आज का हमारा विषय है आज का युवा। जैसा कि आपने बताया कि हम गांव में थे पढ़ने वास्ता बाहर जहाँ थे, जिस तरह आज का युवा पढ़ने वास्ता बाहर जहा, तो उसनों किस तरह, कितने साधन आवा या किस तरह जहा आवा?
2: जिस तरह मैंने अपनी सारी स्टडी, जो भी मैंने पढ़ाई करी, वो गांव थे बाहर शहर में का ही करी, तो मतलब आज के टाइम में साधना का बहुत पर्याप्त मात्रा में मतलब साधन है गांव में। जिस तरह पहला एक बस हो, एक राती बस, उसका टाइम था भी 8 बजे आना सवेरी, जिस तरह बच्चे कॉलेज में जहाँ थे, जो भी यूनिवर्सिटी जहाँ भी पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेज में, तो उसके बाद वो 2:30 बजे या फिर 5 बजे ऐसा टाइम था उसका। लेकिन आज के टाइम में गाँव में दो दो बसा लग रही, ऑटो वगैरह, मतलब मैजिक, सारी चीजा की फैसिलिटी है। और आज के टाइम में एक फैसिलिटी हो रहा है कि आज घर घर में साधन है, जैसे मोटरसाइकिल या कार वगैरह या स्कूटी वगैरह, मतलब हर घर में साधन है। आज के टाइम में फैसिलिटी ज्यादा मिलने लगी बच्चे नू, और जिस तरह बच्चे गांव में शहर में पढ़ने आवा तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं होती।
1: जब लड़के लड़कियां पढ़ने वास्ते दूर जहां, तो उन्हें कुछ मुसीबत का सामना भी करना पड़ा?
2: हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने भी अपनी सारी 5 साल स्टडी बाहर ही करी है, गोमत एक शहर में आई, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि बस वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हुआ। और इस चीज़ में मैं कहूँगी कि लड़कियाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, मुश्किल का सामना इस टाइप से करना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने पहला भी बताया कि लड़के लिफ्ट लेकर जा सका, लेकिन लड़कियाँ लिफ्ट लेकर नहीं जा सकती। तो जैसे भीड़ हुआ बस वहाँ बहुत बहुत, तो फिर जैसे लड़के हुआ वो तो बाहर भी बारी पर भी लटक का चले जहाँ, लेकिन लड़कियां उसमें लटक नहीं सकती। कई बार बसा नहीं मिलती तो उन्होंने बसा के पीछे भागना पड़ा। कई बार ऐसी सिचुएशन हुआ भीड़ के अंदर जिसमें मैं शायद शब्द में नहीं बयां कर सकती, और उस चीज़ नू सिर्फ वही समझ सका जिसने चीज फेस करी हो। क्योंकि मैं जैसे मैंने कॉलेज में पढ़ी तो फिर मैं बसा में ही मेरा आना जाना था, तो उस चीज नू वही इंसान समझ सका।
1: तो इसका क्या समाधान हो सका?
2: हाँ, लड़कियां नू बहुत ही मुश्किल हुआ जैसे बसामा, तो इसका यही समाधान है कि मतलब लड़कियां वास्ता कोई अलग से बस की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ लड़कियां, लेडीज, औरतें ही ट्रैवल करा, और मतलब जैसे कंडक्टर हुआ बस की तो मतलब लड़की हो, ताकि उन्होंने कंफर्टेबल फील हुआ कि हाँ मतलब किसी टाइप से वो अपने आप नू यूं ना महसूस करा भी हाँ हम यहाँ खड़े या कुछ ऐसा। और मतलब इसके लिए कुछ टाइम तक ये सर्विस मिली भी, कुछ बस चलाई गई जिसमें सिर्फ लेडीज ही ट्रैवल कर रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सर्विस बंद कर दी जा। और एक सिस्टम हो रहा, मतलब जैसे बस की बारी हुआ तो मतलब ऐसा सिस्टम कर लें कि जो फर्स्ट वाली बारी उस पर सिर्फ लेडीज ही मतलब चढ़ांगी बस में, जो पिछले वाली बारी उसमें बॉयज या जेंट्स ही चढ़ सका। तो मतलब इस टाइप से कुछ सिस्टम बनाना चाहिए ताकि जो हमारी लड़कियां हैं या हमारी औरतें, उन्होंने पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो और वो अपनी पढ़ाई नू अच्छे तरीके से आगे तक लेकर जा।
1: तो जिस तरह आप बस में पढ़ने जहाँ थे, बस में सफर कराते, तो वहाँ आप किस तरह टाइम अपना स्पेंड करे कराते?
2: हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह मैं अपने गांव ते यहाँ अम्बाड़े वास्ता हूँ थी, तो थोड़े टाइम का ही रास्ता हुआ था, उसमें मैं मतलब यही कि सॉन्ग सुन लिए या कुछ जैसे अपनी स्टडी से रिलेटेड पढ़ लिया, कुछ करंट अफेयर मेरे पास सब्जेक्ट था तो मैं न्यूज़पेपर ले लूँ थी बस स्टैंड से, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ती आंदी रहूँ थी रस्ते में। लेकिन कई बार जैसे न्यूज़ पढ़ का भी बंदा, तो कई बार जैसे न्यूज़ पढ़ ली उसके बाद फिर मैं कुछ सॉन्ग वगैरह सुन लूँ थी। और जैसे मैंने पंचकूला करी अपनी पोस्ट ग्रेजुएट, तो वो बहुत ही लंबा सफ़र था, और उसके साथ साथ ही मैं गाने सुन ले करूँ थी, इंजॉय करे अपना सफ़र।
1: अच्छा, तो आपका कोई फेवरेट सॉन्ग हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे आप?
2: बिल्कुल, मैं ज्यादा मतलब जो गीत होते हैं वो जैसे हिंदी भी सुन लो या फिर पंजाबी, जैसे मेरे फेवरेट सिंगर सतिंदर सरताज जी और एमी विर्क जी हैं, तो मैं सतिंदर सरताज जी का एक सजन राजी गाना थोड़ा सा आप नूं सुनाना चाहूंगी। प्यार हुंदा फुलां तो मलूक सोनिया, जिवें हुंदी मोरनी दी कूक सोनिया, दूर किते जंगलां च नचदी फिरे, शहर तक सुन जांदी हूक सोनिया। सजन राजी हो जवे फिर भी ओ रोला नहीं ओ पाईदा पागला।
3: प्यार हुंदा फुलां तो मलूक सोनिया,

0: चला अपने कार्यक्रम की तरफ। जब आप कॉलेज में पढ़ा थी तो आपके पास कौन कौन से विषय थे?
1: जी मैंने जिस तरह ग्रेजुएशन भी जनसंचार ते करी है, मास कम्युनिकेशन ते, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी, तो मेरे पास यही सब्जेक्ट थे जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटोग्राफी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, करंट अफेयर, यही सब्जेक्ट थे मेरे पास मेन। और मैंने मतलब इन्हीं सब्जेक्ट्स में अपनी स्टडी करी है, तो स्टडी के साथ साथ मैंने एक्टिविटी जो कॉलेज में परफॉर्मेंस हुआ थी उनमें भी पार्टिसिपेट करा, जैसे डिबेट होगी, भाषण प्रतियोगिता होगी और कविता होगी, और जैसे मेरे पास कॉलेज में जैसे एनसीसी होती है, एनएसएस होती है, तो मैंने एनएसएस में भी पार्टिसिपेट कर रखा था, और उसमें जैसे कैंप वगैरह लगाते तो मैं उनमें भी जाऊँ थी।
0: घर में अपना समय क्या करने में बितावा आप, जो आपके पास आपका खाली समय हुआ किस तरह बतावा?
1: जी जिस तरह मेरा खाली टाइम हो आज, जिस तरह पहला तो मैं अपने घर का काम करूँ, सारा झाड़ू पोछा अपना, सारा जितना भी काम हो घर का एक, तो उसके बाद जैसे फिर फ्री हो जा काम करने के बाद, तो जैसे मैं अपनी कोई स्टडी से रिलेटेड या मतलब जो मेरा प्लानिंग है फ्यूचर में उससे रिलेटेड मैं कुछ काम करूँ, मतलब कोई बुक्स वगैरह या कुछ भी जो भी पढ़ना होगा उसके लिए वह करूँ। फिर उसके बाद मतलब मैं कुछ टाइम अपना एंटरटेनमेंट करने वास्ता जिस तरह सॉन्ग सुनूंगी या कोई मूवी देखूंगी, फनी मूवी, कोई मूवी वगैरह देख लिया तब भी टाइम नहीं स्पेंड हो रहा, तो मैं यूट्यूब से कोई रेसिपी देख लूँ नवी की, कुछ नया बनाया जा कुछ अलग सा, इस टाइप से मैं अपना टाइम स्पेंड करूँ।
0: तो अपनो खाने में क्या क्या बनाना हुआ?
1: खाने में जिस तरह अपना रोटी सब्जी है तो सारा ही आवा, जैसे कोफ्ते या रायता या फिर कड़ी चावल, मक्की की रोटी होती है वो भी बना लेती हूँ, गेहूं की रोटी तो चलो सभी बना लेते हैं, मतलब सारा काम जो भी रसोई का काम होता है सारा काम कर लेती हूँ मैं।
0: कभी कुछ आपने बनाना कुछ और चेहरे या बन गया कुछ और, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई या?
1: हाँ जी बिल्कुल, मेरी साथ मतलब अभी कुछ टाइम पहले एक घटना हुई थी, जैसे मैं ना मतलब सोच रही थी बहुत, मम्मी ने बोला अभी खाना बना लो आप, तो उस टाइम मैंने दाल बनानी थी, जैसे मूंगी मसरी की दाल हो अपनी, तो वो दाल बनानी थी मैंने, तो मूंगी की तो डाल ली, फिर उसके बाद मैंने उसमें डालनी थी मसरी की, लेकिन उड़द की डाल दी, वाइट उड़द वहाँ जो, तो फिर मैंने देखा मैं इसका कलर तो वाइट है, डालनी तो मैंने संतरी ऑरेंज कलर की थी, तो फिर सोचा अब क्या करूं, फिर मैंने वो भी डाल दी, तो वो तीन टाइप की दाल होगी, तो फिर मैंने जैसे वो दाल बन गई तो मैंने मम्मी को पहले ही बता दिया, मैं कहा मेरे पते आज गलती होगी यार, मैंने यह दाल तीन टाइप की बना दी, तो कह रही चलो कोई नहीं, जब उन्होंने खाई तो उन्होंने अच्छी लगी, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि गलत किया यूं किया।
0: तो थारी कोई फेमस रेसिपी जो आज थारे घर के अनु बड़ी पसंद हो?
1: बिल्कुल हाँ, मतलब जो मेरे रिश्तेदार आवा या मतलब मेरे फैमिली वाले, उन्होंने मेरे खीर पूड़े बहुत ही ज्यादा पसंद है, कि मतलब जैसे मेरी सिस्टर जिनकी शादी होगी है ना, तो वो जैसे बोलना तो कह रही भी नेहा इब हम आ रहे मतलब घर, तो खीर पूड़े बना दे अपने हाथ के, मनु वो बहुत पसंद आ। उसके साथ ही मतलब मैं और सारी चीजें जैसे गुलगुले हुआ अपने वो भी बना लूं, मतलब और भी सारी रेसिपी बना लूं, लेकिन जो मशहूर है जो मेरी रेसिपी वो खीर पूड़े ही है, तो मेरे रिश्तेदार सब या मेरे फैमिली वाले खीर पूड़े मेरे बहुत ही पसंद करा, तो खीर पूड़े बनाने वास्ता हमनू पहला जिस तरह खीर हुआ, तो खीर वास्ता दूध नू रखो गैस पर या चूल्हे पर जिस पर भी आप बना रहे, तो दूध नू उबाल, जब तक उसमें उबाल नहीं आता तो उसमें चावल ना पाओ, जैसे चावल मतलब एक तो चावल हुआ मतलब लंबे वाले, लेकिन उसमें ना किनकियां वाले चावल यूज करने चाहिए, उसकी ज्यादा टेस्टी बना खीर, जब उसमें दूध में उबाल आ जाए तो उसमें जो किनकियां वाले चावल है उसनू पानी में अच्छे तरीके से धो का थोड़ा टाइम पहला भगो कर रख दो उसनू, ताकि वो अच्छे हो जाए मतलब गल जा, तो फिर उसनू चावल नू डाल दो खीर के अंदर, फिर उसनू पकाओ बिल्कुल, जब तक ना चावल और दूध आपस में मिल ना जा तब तक वो गैस बंद ना करो, हल्की आँच पर उसनू पकाते रहो, उसमें ड्राई फ्रूट डाल सका, काजू जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, किशमिश वगैरह, और जो ये तो खीर बन गई जैसे हमारी, तो फिर पूड़े वास्ता आप क्या कर सका, जैसे आटा ले पहला गेहूं का आटा हुआ, तो गेहूं के आटे में आप जैसे चीनी की चाशनी या फिर आपके घर शक्कर की चाशनी या गुड़ उसकी चाशनी नो ऐड करो, तो आटा मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा करड़ा भी नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा आटा होना चाहिए, ताकि जैसे हम उसनु तवे पर गेरेंगे तो आराम से उठ सका, तो उसनु मिक्स करके आप उसमें काजू बादाम डाल सका, अगर आपकी इच्छा इलायची छोटी इलायची कूट का इलायची डाल सका, फिर उसनु आप तवे मतलब तवा बिल्कुल ही अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर तवे पर बिल्कुल कुछ रह गया मतलब तवा साफ ना करेगा तो वो जो हमारे पूड़े वो तवे से उठने के नहीं है, वो वहीं चिपक जाएंगे, तो तवा अच्छे तरीके से धोना होना चाहिए, और फिर उसनु पूड़े नु हम जो आटे का गोला उसनु हम तवे पर गेर दें, और फिर उसनु सारे तवे पर फैलाने वास्ता जैसे हम तो यूज गाँव में तो जो जामण का पत्ता हुआ उसनु यूज करा, जामण के पत्ते दे उसनु सारे तवे पर फैला दे, फिर उसकी साइड में घी तेल जो भी आपके पास है वो डालना, फिर उसनु उठा लें हल्के दे, और फिर इस तरह हमारे पूड़े तैयार हो जाओ।
0: क्या आप हमारे श्रोताओं को कोई और अपना मनपसंद गाना सुनाना चाहोगे?
1: जी बिल्कुल, जैसे मैं पंजाबी सारे ही गाने सुनो, हिंदी पंजाबी, तो मतलब हरियाणवी एक सॉन्ग है वो भी मैनू बहुत ही अच्छा लगा, जिप्सी सॉन्ग है वो, हरियाणवी सॉन्ग।
0: तो क्या आप हमारे श्रोता वास्ता थोड़ा गुनगुनाना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, ओ सहजो

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमारा आज का कार्यक्रम है घर परिवार। तो नेहा जी, आज का जो युवा है वो टेक्नोलॉजी का कितना प्रयोग करा और कितना जुड़ा है उससे?
1: जी बिल्कुल, आज का जो युवा वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहा। आज के टाइम में मतलब जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने जो भी मटेरियल चाहिए पढ़ाई के रिलेटेड अपना सर्च करो और सारा मटेरियल मिल जा। और जिस तरह जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, जिस तरह मानू पूछना भी पुराने टाइम में मिट्टी के बर्तन हो कराते उनमें क्या खाना बने कराता कुछ भी, तो हम अगर सर्च करांगे तो उसमें बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी और मतलब पता लग जाएगा भी हाँ मिट्टी के बर्तन का कैसा कैसा प्रयोग हो अतर क्या क्या उनमें दाल सब्जी बनावा थे। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई और युवा बहुत ज्यादा इसका यूज कर रहा। युवा भी लगा लो, आप बुजुर्ग भी लगा लो, सब इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आज के टाइम।
0: तो जिस तरह हमारा आज का युवा टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी है हमारी जिंदगी पर?
1: जी बिल्कुल, वही मतलब एक बात दीपक जी मैं आपनु कहना चाहूंगी भी हर चीज के दो पहलू हुआ, एक सही हुआ एक गलत हुआ, एक अच्छा हुआ एक बुरा हुआ। तो ऐसी टेक्नोलॉजी में इसके भी दो पहलू हुआ, एक अच्छा एक बुरा, इसनु दो तरीके ते ही ले रहे हैं मतलब अच्छा बुरा। तो जिस तरह यूज कर रहे इसनु मतलब हाँ इसमें बहुत अच्छी चीजें भी आवा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी आवा जो शायद जो देखने लायक नहीं होंगी। तो मतलब युवा जैसे कोरोना के टाइम की मैं बात करूं, ऑफलाइन पढ़ाई तो बंद हो गई थी तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी, तो स्कूल में बच्चों को फोन दिए गए टैब 10वीं और 12वीं वाले नु, तो बच्चा ने मतलब वो सिर्फ पढ़ने वास्ते दिए गए थे उसमें, उस टाइम वो ऐप थी जिसमें सिर्फ पढ़ाई की बात करी गई थी उनकी क्लास से रिलेटेड, लेकिन बच्चा ने उसमें उसके अंदर सोशल मीडिया और अलग अलग ऐप डाउनलोड कर लिए, गाने सुनना या मतलब बच्चे उस चीज पर बहुत ज्यादा गलत की तरफ लेकर चले गए। मतलब दिए थे तो वह सही यूज वास्ते लेकिन उसने गलत यूज कर लिया उन्होंने, तो टेक्नोलॉजी का गलत यूज भी हो रहा कहीं ना कहीं मैं कहूंगी आज के टाइम में।
0: तो जिस तरह हमारे गांव के बच्चे हुआ या किसी भी स्कूल के बच्चे हैं, तो वो स्कूल में जहा और वे गेल फोन लेगा जहा, तो क्या है वो ले जाना अच्छा?
1: नहीं बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं अपनी बात करूं या मेरे टाइम थे थोड़े टाइम की पहला, तो अगर मतलब बच्चे के पास अगर फोन मिल जाता स्कूल में तो उसने बहुत पनिशमेंट दिया थी, बहुत ज्यादा मतलब उसने घर उसके बताया जाता भी हाँ इसके पास फोन मिला। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो बच्चे मैं देखूँ जैसे मैं ट्रैवल करूँ बस में भी या मैं जैसे अपने कॉलेज टाइम में मैंने देखा, तो बच्चे फोन का यूज बहुत कर रहे और जो स्कूल के 10वीं 12वीं के बच्चे वो भी फोन लेकर स्कूल में जा रहे हैं। ये फोन ले जाना स्कूल टाइम में, जैसे मैं बात बताऊं जैसे 10वीं 12वीं यही बच्चे का एक बेस हुआ जहां तो उसने कुछ करना या आगे बढ़ने की प्लानिंग करा भी हाँ, लेकिन वो बेस यहीं ते खराब हो जा, फोन में ध्यान दे रहे तो फोन में वही सोशल ऐप या फिर म्यूजिक तो उसी गेम खेल रहे हैं। बहुत सी गेम बैन भी करी गई, बच्चे बहुत ज्यादा यूज करने लग गए थे, गलत लग गए थे करने अपने साथ, तो इस टाइप से बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। तो मतलब जब बच्चे फोन का यूज कर रहे तो माँ बाप नु भी देखना चाहिए भी मेरा बच्चा फोन में क्या देख रहा है क्या नहीं। तो यह ड्यूटी मतलब बच्चे की नहीं एक माँ बाप की भी बना कि उसनु अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चा फोन कब तक यूज कर रहा है क्या देख रहा है, और एक लिमिट होनी चाहिए फोन देखने की, है ना। यूं नहीं कि बच्चा सवेर ते फोन देख रहा शाम तक देखता ही रहा देखता ही रहा, अगर उसनु फोन ना दे तो वो रोन लग जा कि मैं फोन नहीं दिया मैनु, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप नु भी थोड़ा रूल रेगुलेशन करने चाहिए बच्चे के प्रति।
0: तो हम भी एक युवा है और आज के युवा नु आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं भी एक युवा हूँ तो मैं युवा होने के नाते यही संदेश देना चाहूंगी कि जो हमारे माँ बाप हैं वो मानू चाहे लड़का चाहे लड़की पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं भी हमारे बच्चे नु यहाँ भी दिक्कत ना हो यहाँ भी दिक्कत ना हो, तो जो हम बच्चे हैं तुम्हारा भी एक फर्ज बना अपने माँ बाप के प्रति, बिना ने मानू जन्म दिया हमारा पालन पोषण करा तो हम भी अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करा और जो उन्होंने हमारे ते इच्छा है भी हाँ हमारे बच्चे पढ़ लिख का एक अच्छी जगह कहीं देखना चाहवे और जो भी उनकी इच्छा हम वो इच्छा पूरी कर सका।
0: नेहा जी, हम थारे ते एक और गाना सुनना चाहेंगे लेकिन कार्यक्रम का समय और समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे लेंगे हम इजाजत। जय हिंद जय भारत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपने मेरे ते यहाँ बुलाया, जय हिंद जय भारत। और एक मैं आपनु अपना फेवरेट गाना और सुनाना चाहूंगी, मस्त बना

सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 3। आज के मेहमान थे नेहा धाकड़, एडिटिंग व प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, रिकॉर्डिंग सेजल पुंज, निर्देशन भारत सोपोरी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए आज मैं आपको एक कविता सुनाता हूं जिसको लिखा है सरस्वती कौल बट जी ने, जो पंचकुला में रहती हैं। कश्मीरी पंडितों को अपने वतन से बेघर हुए अब लगभग 33 वर्ष हो चुके हैं, यानी 3 दशक से ऊपर। बच्चे जवान हो गए, जवान बुजुर्ग और बुजुर्गवार या तो हैं या फिर त्राही त्राही करते सिधार गए। कैसे दुखद त्रासद स्थिति है कि नई पीढ़ी के किशोर युवाओं को ये नहीं मालूम कि उनका जन्म कहां हुआ, उनकी मातृभूमि कौन सी है। बाप दादाओं से उन्हें जरूर सुना होगा कि मूलतः वे कश्मीरी पंडित हैं, मगर 1990 में

वे बेघर हुए थे। एक चीज तो सत्य है, कश्मीर से हम सबको निकाला गया है, पर हमारे भीतर कश्मीर को कोई भी नहीं निकाल सकता। इसी संदर्भ में हमारी बहन सरस्वती कौल भट्ट जी ने यह कविता लिखी है। आइए मैं आपको ये कविता सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है कब तक। चंद सांसें लेना कठिन है, चंद सांसें लेना कठिन है, इंसानियत भी शर्मसार है। वीरान चमन और शुष्क है भावना, मौन खड़े हैं पर्वत, नदियां शिथिल हैं। देख रहा है चुपचाप विस्तृत आकाश, थम सी गई है वितस्ता। शंकर आचार्य और कलहन की धरा आज रक्त रंजित है। सब और नरबक्षी मंडरा रहे हैं, हर कोना है बहुत ही डरावना। न जाने कब किसकी बारी है, जिंदगी यहां मौत से हारी है। मौत का तांडव जिद पर अड़ा है, हर मोड़ पर राक्षस खड़ा है। चीथड़ों में लिपटी लाशें चीख रही है, किसी की मां, किसी का भाई, किसी का बाप, पति किसी का, मौत की बेंट चढ़ा है। कश्यप तेरी धरती पर इतना चीत्कार, भगवान तुमने ही तो ये सृष्टि बनाई, हे ईश्वर तू कर कोई उपकार, रोक दे ये घातक नरसंहार, रोक दे ये घातक नरसंहार। ये कविता लिखी है बहन सरस्वती कौल भट्ट जी ने, और ये कविता खुद ही उस दर्द को बयां करती है जो हम जागते सोते अपने आसपास ही महसूस करते हैं। ये 33 वर्ष भी अब 33 दिन से ज्यादा नहीं लगते। ऐसा लगता है कि कल ही हमने अपने घर को छोड़ा है। प्रभु करे किसी का घर ना छूटे। आखिर घर तो घर है। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

0: वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।
1: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे. हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है. हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह.
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है.
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी.
0: आप सुन रहे हैं एफ एम 90.0 मेगा हर्ट्ज रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो. सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत.
3: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो.
4: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने.
5: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं.
4: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में. तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए.
5: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
4: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
5: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
4: गणपति बप्पा मोरिया.

आवाज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मेरी नजर में एक कहानी आई, बहुत दिल को छूने वाली कहानी थी। हमें अक्सर लेने में सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, लेकिन इस कहानी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि जो सुख देने में है वो लेने में तो है ही नहीं। तो इतनी हृदय स्पर्शी कहानी पढ़ने के बाद मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना ये कहानी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो आइए दोस्तों, मैं नमन करता हूं उस लेखनी को, उस लेखक को जिसने ये कहानी लिखी है, और साथ में ही क्षमा भी चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं जानता कि उनका नाम क्या है। हाँ, ये जरूर चाहता हूं कि ये कहानी अधिक से अधिक लोग सुन सकें। एक पिता और पुत्र साथ साथ टहलने निकले। वो दूर खेतों की तरफ निकल आए, तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे किसी गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा कि उन्हें आज की शाम को थोड़ा शरारत से यादगार बनाए, आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने थोड़ा हैरानगी से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं, जब वो मजदूर इन्हें यहां नहीं पाकर घबराएगा ना तो बड़ा मजा आएगा, उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता पुत्र की बातों को सुनकर गंभीर हुए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ, उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी ना करना। जिन चीजों की तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती हैं। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है ना, तो आओ आज हम इन जूतों में कुछ पैसे डाल देते हैं और छुपकर देखते हैं कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में जाकर छुप गए। मजदूर जल्दी ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आया। उसने जैसे ही एक पैर में जूते डाले, उसे किसी चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि दोनों जूतों के अंदर कुछ रुपए पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और रुपए हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वो इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने रुपए अपनी जेब में डाल लिए। अब दूसरे जूते में से भी इसी प्रकार रुपए

तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुनकर बेटे की आंखें भर आई। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजाक और मजे वाली बात, उससे तुम्हें इतना आनंद प्राप्त होता, तुम्हें जीवन भर याद रहता, या इसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और ये दिए हुए आशीर्वाद जो जीवन पर्यंत तुम्हें आनंद भी देंगे, ये कम है? बेटे ने कहा, पिताजी, आपसे मुझे जो सीखने को मिला, उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी तक समझ नहीं पाया था, जिनको मैं मजाक और मस्ती को ही आनंद समझता था। आज मैं समझ गया कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय, अपने कमेंट्स आप हमारे को ज़रूर लिखें, ताकि हम रेडियो विदस्ता पर आपके लिए और अधिक भावनात्मक और महत्वाकांक्षी मनोरंजक इस प्रकार की कहानियाँ लेकर आ सकें। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे। आप अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजन रूजियो पनन पसंदीदा बात।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आधे घंटे तक आप बने रहेंगे मेरे साथ और हम यह सफर तय करेंगे मुस्कुराते मुस्कुराते। लब पर जो आ जाए तराना अच्छा लगता है, गीत नया हो या हो पुराना अच्छा लगता है। मैं हूं रमेश मराठा, वेलकम।

जब कभी फरामोश किया था, बर्फ की चादर पे चलते चलते, गुजरते गुजरते इन्हीं राहों पे, जहां आज हमारी चाहतों के टुकड़े अब बिखर चुके हैं। जब कभी रिश्तों की अहमियत तुम समझोगे, तब तुम खामोशी से, चुपके से आना और देना मेरी दहलीज पे दस्तक। शायद हम अपनी भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा करें और जिए अपने अतीत के साथ, संभलते संभलते एक दूसरे को थामते हुए।

अपनी चाहतों की तरह तुम अक्सर कहा करते थे, मौसम आएंगे मौसम जाएंगे, पर काश कभी तुम लौट के आते, अपनी चुप्पी तोड़ लेते, मुझ पे एहसान फरमाते, अपने आगोश के पनाहों में मुझे रख लेते, फिर मोहब्बत करते चुपचाप।

हम तो अपना दर्द छिपाए बैठे हैं एक सदी से। मुझको कहां खबर थी कि तुम यूं खफा हो जाओगी और साथ निभाने का अहद भी तोड़ दोगे। तुम सामने होते हो पर हर पल ओझल हो जाते हो शबनमी बूंदों की तरह। क्या तुम्हें मालूम है ढूंढा है मैंने तुमको इस कायनात के जर्रे जर्रे में इन हवाओं में इन वीरानियों में खंडहरों में यहां इन बेनाम बस्तियों में इन पानियों की गहराइयों में। पर मिला बस एक लम्हा तुम्हारी याद का सिर्फ तुम्हारी याद का।

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते। जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

0: सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाहा सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।
1: जब कभी मेरे आंगन में पेड़ों की इन्हीं शाखों पे लचकती थी चांदनी, जब खुशनुमा मौसम के इन हसी लम्हों में तुम्हारा करीब आना, रुक जाना, उठ जाना, फिर ढल जाना, बिना कुछ कहे दूर जाकर मोहब्बत का इजहार करना।

मुझको अब न आरजू कोई न है कोई तमन्ना, बस तुम यूं ही मेरे ख्वाबों में आते रहो। यही एक हसरत लिए बरसों से भटक रहा हूं। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे मेल करिए ramesh.marathan@gmail.com। अब चाहेंगे आपसे इजाजत और छोड़ जाते हैं।

0: सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 14। कार्यक्रम का शीर्षक है बाबुल। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका एक और खूबसूरत महफिल में, जहां अल्फाज रोशनी बनके चमकेंगे और सुरों की बारिश यादों को गीला करेंगी। ये है रेडियो वितस्ता 90.0 FM, जहां हर एहसास एक गीत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। चलिए शुरू करते हैं एक नए रेट्रो हिट्स का अंक, बाबुल। बाबुल, बाबुल एक बहुत गहराई भरा शब्द है जो बेटी की विदाई, पिता का प्यार और घर छोड़ने का दुख बयां करता है। वो जो छोड़ा था मैंने आंगन, आज भी यादों में महका करता है। दल गया आंगन का सूरज, अब अंधेरा छाएगा। बाबुल की लाडली बेटी एक दिन पराई हो जाएगी।
1: बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझ

मैं जब घर छोड़कर यहाँ पहली बार आई थी तो मैं बहुत रो रही थी, और आज जब घर वापस जाने का वक्त आ गया है तो फिर से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं।

हर गीत एक नया मोड़ लाती है, हर याद एक नए इंतजार की दस्तक देती है। आज की महफिल यहीं तक, पर कहानी अभी बाकी है। फिर मिलेंगे नए सुरों नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 14। कार्यक्रम का शीर्षक था बाबुल, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: पेश है रमेश मरहटा के काव्य संग्रह तैरते बादलों में एक शाम पर आधारित हमारा यह विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हम श्री रमेश मरहटा जी को समर्पित कर रहे हैं। इसे पेश कर रहे हैं नरेश शर्मा।
1: रमेश मरहटा, एक एहसास, वो एहसास जिसे महसूस करते ही खूबसूरत फिजाओं में दिलकश मौसीकी अपने आगोश में समेट लेने को बेताब हो उठती है। लेकिन उनका आभामंडल सौंधे सौंधे माहौल को अपनी गिरफ्त से बाहर ही नहीं आने देता। उनकी कलम की जादूगरी को एक शक्ल देने की कोशिश जहन को किसी और ही दुनिया की महक से सराबोर कर रही है। आइए महसूस करें तैरते बादलों में एक शाम। मौसीकी और शब्दों की कारीगरी का सफर अपने रेडियो हम सफर नरेश शर्मा के साथ।

0: मौसम है तुम्हारी यादों का, जब महीना था सावन का, तब तुम लौट आए थे नंगे पांव, भीगते भीगते भीगे थे कप कपाते होंठ, चेहरे की रौनक और सादगी से भरा कद एक आदम जिस्म का, लरजना लाजमी था, धड़कने उदासी में लिपटी हुई थी, शायद अपना दर्द बयां कर रही थी, वर मेरी पनाहों में जो तुम ठहरते पल भर के लिए, फिर से खिल उठता तुम्हारी यादों का मौसम, बीते मौसम की तरह।
1: वो जब याद आए बहुत

मौसम आए मौसम जाए, पर तुम कभी ना आए। तुम आगाज थे रोशनियों के, सफर में हम सफर थे, मील के पत्थर थे, मोहब्बत की सरहदों के निगहवान थे, मेरी हर कोशिश की शुरुआत थे और सुबह की पुकार थे। कितने ही मौसम आए, कितने ही मौसम जाएं, क्यों नहीं कभी तुम लौट कर आए, क्यों नहीं कभी तुम लौट कर आए।

समय की इन तेज धाराओं से गुजरते गुजरते बीत गए कई युग। हर युग में समेटना चाहा तुम्हें अपनी बाहों में, छेड़ना भी चाहा तुम्हें अपने एहसास में, उतारना भी चाहा अपनी धड़कनों में, बसाना भी चाहा तुम्हें हम सफर बनाना चाहा, सजदों में बाकी उम्र बिताना चाहा। दुख की परिभाषा क्या है, तुम्हारे सुख की कल्पना करना चाहता था मगर ऐसा हो न सका, मगर ऐसा हो न सका।

तैरते बादल, बेशक परस्तिश में वक्त गुजरता, जो तुम रूबरू मुझे अपनी पहचान कराते, रिश्तों को जिताते, मेरे जज्बात को अपनी पनाहों में महफूज रखते, अपनी इबादत दुआओं में मुझे शामिल कराते। मैं जानता हूं मैंने बेइंतहा प्यार किया है तुमसे, जिसकी गवाही आसमानों में तैरते बादल हमेशा से देते आ रहे हैं।

तन्हा पत्थर। कुछ तो सपने थे और कुछ हकीकत, रास्ते वो थे पर बीच राह में हम सफर खो गए। पल भर में यहां मौसम बदलते गए और तर्क करते रहे मेरी आंखों की खामोशी। इस काले घने धुएं में तुम्हें से मिलने की जुस्तजू बरकरार रही और रात भर जलते रहे बुझते रहे रोशनियों के चिराग। फिर धीरे धीरे मेरे तुम्हारे रास्ते सिमट गए। अब गुमनामी की इन बस्तियों में तन्हा पत्थरों को तराश कर क्या हासिल है।

ख्वाब की तरह। वो लम्हे हमारे अपने थे जब चांदनी रातों में हम सितारों की दूरियां नाप लिया करते थे, इनका दर्द समझने की कोशिश करते थे। इन्हें तुम अपने आंचल में छिपा लिया करते थे और इनसे हम कलाम हुआ करते थे। इन चांदनी रातों में हम दोनों इन सितारों को निहारते थे, हमें इनकी खामोशी का एहसास था और इनकी सिसकियां हमें महसूस हुआ करती थी, पर अब ये सब ख्वाब की तरह हैं जो हकीकत से कोसों दूर हैं।

उम्मीद कली, वो जो चाहते हैं बांटते रहे सरेआम अपनी खुशियों को नीलाम करके, बावजूद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। वह जीने का अंदाज जानता था। दूर पतंग की डोर पकड़कर खुले आकाश में पतंग को उड़ाने का हुनर जानता था। उसकी एक मुस्कुराहट लिए अपनी मुस्कुराहट फिदा करता था, शायद ये सोचकर कि एक दिन एक नन्ही कली खेलेगी उसके आंगन में ढेर सारी मुस्कुराहटों के साथ।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विस्तार के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

यो FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: You are listening FM 90.0 megahertz radio vitasta hum safar zindagi ka Ambala Kent's first community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting Government of India
1: sunan khatar aryanvi song करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अम्बाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अम्बाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अम्बाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अम्बाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अम्बाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अम्बाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अम्बाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अम्बाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती हैं।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: डाला झमेल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
4: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
5: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधार रहे हैं।
4: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
5: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
4: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
5: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
4: गणपति बप्पा मोरिया।

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। आज के हमारे मेहमान है श्रीमती हरजीत कौर लांबा, प्रस्तुतकर्ता आजय किरने।
1: कार्यक्रम घर परिवार के आज के अंक में मैं किरनी सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं और हरजीत लांबा जी आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: सबसे पहले सभी सुनने वाले श्रोता को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार और किरनी जी आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में आए। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले तो घर में खुशियों के फूल खिले। एक नारी अकेले ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आप समझ ही गए होंगे कि आज चर्चा का विषय है नारी। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ हरजीत जी, आप बेटियों यानी नारी की व्याख्या किन शब्दों में करोगे?
2: देखो, जब बेटी का जन्म होता है तो परिवार में बहुत खुशी का माहौल होता है। बेटी के बिना कोई परिवार पूरा नहीं होता। बहुत खुशनसीब हैं वो माता पिता जिनके परिवार में बेटी होती है। आपकी बेटी हमेशा आपकी स्थिति को समझती है। अच्छे बुरे का बेटियां परिवार के लिए उपहार की तरह होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक बेटी चाहते हैं ताकि उनका परिवार पूरा हो सके। कई लोग बेटी को बोझ समझते हैं लेकिन ये सच नहीं है। बेटियां उनके लिए वरदान होती हैं। यही बेटी नारी की भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ, जो बेटी है वो घर को स्वर्ग बनाती है। हर एक चाहता है कि उसकी एक बेटी हो। बेटी समाज का मूल आधार है तथा ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत और अमूल्य रचना है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नारी समाज में अनेक रिश्ते निभाती है, चाहे वो बहन का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, दादी का हो, आपका क्या मानना है? कृपया विस्तार में बताइए।
2: परिवार में बेटी और बेटे का समान रूप से महत्व होता है। वर्तमान समाज में भेदभाव को मिटाकर बेटियों को महत्व देना चाहिए। बेटियां ही घर की संचालन शक्ति होती हैं। माँ, बहन एवं पत्नी के रूप में उनका सर्वांग जीवन त्याग एवं सेवा की लंबी गाथा है, उसका बहुत वर्णन है।
1: जी हाँ, एक नारी जो है बहन का, माँ का, पत्नी का, दादी का, सारे रिश्ते बखूबी और बहुत ही खूबसूरती से निभाती है। अब हरजीत जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आज की नारी है, नारी का वर्तमान जो स्वरूप है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
2: देखो, नारी समाज में भी सबसे आगे आई है। आज बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बेटियां विराजमान हैं। पुराने समय में लड़कियां बहुत समझी जाती थी लेकिन आज का युग नारी युग है।
1: जी हाँ, मेरी राय भी यही है। मेरा मानना ये है कि जो वर्तमान की नारी है वो आर्थिक की दृष्टि से आजाद हो, शिक्षित हो, पुरुष की दास्तां से मुक्त हो, दोनों यानी कि एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हाँ जी,
2: देखो किरणी जी, हमारे समाज में जागरूकता आई है, भ्रूण हत्या अब कम हुई है, गवर्नमेंट ने भी कानून जो है बना दिए हैं, बहुत सख्त कानून बनाए हैं कि बेटियों को जन्म से पहले आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं और रेशो में भी लड़कियां जो हैं वो लड़कों के बराबर हो गई हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। बेटी बोझ नहीं सम्मान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है।
1: जी हाँ, इसीलिए हम सबको एक नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि नारी से ही जीवन है। जी, आपकी कविता से मुझे भी दो लाइनें याद आ गई। मुस्कुराकर दर्द बुलाकर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। अब हम आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। आप बताओ आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
2: उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार कराते। किरण जी मुझे ये बहुत पसंद
1: है। चलो आपके पसंद का ये गाना हो जाए। जी हाँ, ये गाना बहुत अच्छा है और इसकी जो पहली दो लाइनें हैं जो कश्मीरी में है वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि भाष से खानो मजगूर दुमे रक्षत मैंने बह जानो। अब सब सुनने वालों को और आपको हम ये वाला गाना सुनाते हैं।
2: वाह खूब।

0: बहुत ही मनमोहक गाना था, हमने और लिस्नर्स ने सुना। आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आज के मौसम के हिसाब से आप कौन सी रेसिपी श्रोताओं को आज बताने वाले हैं?
1: आज मैं आपको फ्रूट क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ठंडा हम खाने को भी मन करता है और पौष्टिक भी है। आजकल किरणी जी बच्चे जो हैं वो फल फ्रूट कुछ चीजें नहीं खाते हैं, इसलिए उनको खिलाना पड़ता है। तो छोटी सी रेसिपी है, उसमें घर में फ्रूट पड़े रहते हैं जैसे सेब, अनार, केला, कोई भी आप ले सकते हो। उनको छोटे छोटे काट कर बाउल में डाल लो, घर की मलाई पड़ी होती है उसको फेंट लो, अगर नहीं है करीम ले आओ, उसमें शहद मिलाकर उनको मिक्स करके आप बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, ये व्रत में भी खा सकते हो आप।
0: जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रेसिपी और कम समय में बनने वाली, मैं भी आज ही ट्राई करूंगी। अब आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
1: तो क्यों ना वो लगाया जाए, अपने पुराने टाइम का गाना, ओ बाबुल प्यारे।
0: जी हाँ, आपके लिए और अपने श्रोताओं के लिए पेश है बाबुल प्यारे।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hamsafar Zindagi Ka.
1: आप कोई घरेलू नुस्खा बताए जो सबके लिए कारगर हो।
2: हाँ जी किरणी जी, आजकल बारिश का मौसम है, तो कुछ ऐसा बताया जाए कि स्किन के लिए, खुजली के लिए, जैसे नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिला के लगाएं कि उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा।
1: जी हाँ, हमारे श्रोताओं को कुछ तो इससे फायदा मिलेगा। मैं भी एक घरेलू नुस्खा आपके साथ और अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है हल्दी। हल्दी तो हर एक किचन में मिलती है। अगर शरीर के किसी हिस्से में चोट लगे तो गर्म दूध में हल्की फुल्की हल्दी डालकर पिए। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जो मसल्स में आई सूजन में राहत दिलाती है। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। हमारे ये दोनों घरेलू नुस्खों से शायद हमारे श्रोताओं को कुछ हेल्प मिले।

0: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: प्रोग्राम के अंतिम हिस्से में अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप आज अंबाला कैंट के पहले FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आए हैं, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए।
2: हमें बहुत खुशी है कि अंबाला कैंट को अपना FM स्टेशन मिला है, जिसके माध्यम से हम सभी अंबाला वासी अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे और पहुंचा सकते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि दिन दुगनी रात चुगनी हो। मैं हमेशा FM सुनती रहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंबाला में मेरे घर के पास FM खुल जाएगा, कि जिसको मैं बड़े मन से सुनती हूँ। अब
1: हरजीत जी, अब हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। उम्मीद है श्रोताओं को आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अब लास्ट में आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
2: आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। हमारे श्रोतागण को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।
1: आइए, आपको हरजीत जी के पसंदीदा गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। इसको प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। रिकॉर्ड एडिट एवं निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया।

0: कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अम्बाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अम्बालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

थम सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ 90.0 FM ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ, ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ।
1: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो वितस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियोस के माध्यम से, गांव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे

बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: Hadi.
1: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
2: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
3: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
2: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
3: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे।
2: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
3: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे।
2: गणपति बप्पा मोरिया।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: ही दालच में एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
1: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
2: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयाल बाग के राजा पधार रहे हैं।
1: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयाल बाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महा आरती का हिस्सा जरूर बनिए।
2: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे।
1: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
2: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे।
1: गणपति बप्पा मोरिया।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 10। कार्यक्रम आधारित है डॉक्टर माधवी गणवीर जी के गजल संग्रहों रेत की नदी और फूल सी गजल पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।
1: साहित्य की पाठशाला की मैं अक्षुण्य विद्यार्थी हूँ। शब्द शब्द जोड़कर भावनाओं के धागे में पिरोकर बांधने का प्रयास करती हूँ। नहीं जानती अपने संग्रह में शिल्प विषय संप्रेषणीयता के मानक पर कितनी खरी हूँ। लेकिन कहते सुना है, अच्छा वही लिखते हैं जो कभी खराब लिखता है। कविता लिखना यदि सरल है तो सरल लिखना भी कठिन है। जानती हूँ मुझे उर्दू नहीं आती। अपने अनुभव आसपास के परिवेश बोली को ही आधार मान लेती हूँ। मूर्धन्य साहित्यकारों की फेरिस्त में सबसे पीछे खड़ी हूँ। इन गजलों को पढ़कर कभी तालियां नहीं बटोरी। ये बस एक एहसास है जो मन से मन तक पहुंचती है। ये शब्द है आज के हमारे मेहमान के, जो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ और आपके साथ रहेंगे, पर गजलों और कविताओं के माध्यम से। इनके लिए वरिष्ठ साहित्यकार श्री सीएल मिश्र साहिल इस कवित्री के लिए लिखते हैं। वैसे तो गजलकार ने छंद कुंडलियां दोहे गीत गजल सभी में अपनी भरपूर कलम चलाने का प्रयास किया है और उसमें पूर्ण रूप से सफल भी हुई हैं, जो इनकी अमूल्य निधि है। एक और प्रसिद्ध गजलकार गीतकार श्री धर्मराज देशराज जी इनके लिए लिखते हैं। इनकी गजलें नई पीढ़ी के लिए नया अध्याय है। प्रस्तुत गजलें सदियों से चली आ रही उस परंपरा का खंडन करती है जब गजलों में बज्म साकी शराब कासिद खत पैमाने हुस्न और इश्क हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ गजल विधा में इंसानी जज्बात भूख पीड़ा दर्दो गम ने लेकिन लिया है, जो इस गजल संग्रह की खूबी है। एक और कवि समीक्षक समाजसेवी विजय सिंह विजय कुछ इनकी शेर बोल के कह रहे हैं। गजब है इश्क भी देखो नहीं करता यहाँ शिकवा, गमों की चार दीवारी हमें हंसकर निभाना है। समाज को सच्चाई दिखाते हुए शब्दिक सौंदर्य पैदा करती हुई शेर आईना भी हकीकत कहेगा, आंख मुझसे जरा तो मिलाओ। दिल की भावना व्यक्त करती हुई और मनोकामनाओं को उठाती आशावाद से प्रेरित शेर, इस जन्म में मिले जो नहीं गम नहीं, उस जन्म का पता तो बताना सनम। बहुत ही सादगी के साथ शिकायत करने की कला गजलकारा डॉक्टर माधवी गणवीर जी की कलम में ही दिखाई दिया। मगरूर हम सनम है मगरूर दिल की राहे, मशगूल तुम हुए तो कैसे करें इशारे। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भारत सोपोरी, लेके आया हूं वितस्ता गीत माला का एपिसोड 10। आज आपको रूबरू कराऊंगा देश की बेटी शिक्षा विद्वान एक सशक्त महिला छत्तीसगढ़ राज्य से डॉक्टर माधवी गणवीर के साथ, पर उनकी गजलों और कविताओं के माध्यम से वितस्ता गीतमाला के दौरा। आइए शुरू करते हैं आज डॉक्टर माधवी गणवीर के लिखे गजलों गीतों से, और साथ ही सुनाऊंगा गीत और गजलें आपके मनोरंजन के लिए भी। आज हम इनके प्रकाशित कविता संग्रह रेत की नदी और फूल सी गजल से कुछ कविताएं सुनाते हैं। पहले शुरू करते हैं कविता संग्रह रेत की नदी से।

डॉक्टर माधवी गणवीर जी लिखती हैं, हो रही जिस्त ये बसर तन्हा, ढूंढती फिर रही नजर तन्हा, वास्ता अब नहीं मुझे उससे, छोड़कर जो गया ये घर तन्हा, चार पैसे कमाने की धुन में छोड़ना पड़ रहा शहर तन्हा, चांद पाने की एक ख्वाहिश में हो रही जिस्त बेहुनर तन्हा, उम्र के इस मुकाम पे आकर अब तो कटता नहीं सफर तन्हा, माँ पिता आज बट गए अब तो, हो गए वो इधर उधर तन्हा, गुनगुनाती है माधवी अक्सर, हम हुए आज इस कदर तन्हा, हम हुए आज इस कदर तन्हा। लेते हैं एक और कविता। जख्म सबको दिखाना नहीं है, इस जहां को रुलाना नहीं है, नेकियां जो करें याद रखिए, नेकियों को बुलाना नहीं है, बेवफा जो हुए देख अपने, ये वफा का जमाना नहीं है, मौत ही है जहां में यकीनी, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जान तुम पर लुटाते फिरे हम, क्या करूं ये बताना नहीं है, रूठना उनका जायज कहूं क्यों, बेवफा को मनाना नहीं है। माधवी दिल है गर खास रब का, दिल किसी का दुखाना नहीं है, दिल किसी का दुखाना नहीं है।

डॉक्टर माधवी गणवीर जी लिखती हैं, ना हम होंगे ना ये संसार होगा, जमाने में सदा ही प्यार होगा, यकीन है एक दिन वो आएगा ही, मोहब्बत से भरा संसार होगा। सनम जब रूबरू हम तुम रहेंगे, तभी तो प्यार का इजहार होगा। कभी छत पे अकेले आइएगा, सुकून से चांद का दीदार होगा। जहां नफरत नहीं बिकती मोहब्बत, नहीं ऐसा कोई बाजार होगा। मिले महबूब मुझको आपसा घर, यकीनन दिल मेरा गुलजार होगा। मोहब्बत से नवाजे रब सभी को, नहीं कोई कभी लाचार होगा। तस्वुर में ही बस देखा उन्हें है, हकीकत में भी कब दीदार होगा। मुसीबत में खड़ा जो माधवी के, वही मेरा भी सच्चा यार होगा, वही मेरा भी सच्चा यार होगा। एक और कविता में डॉक्टर माधवी गणवीर जी लिखती हैं, जो दिल दे गवाही हकीकत वही है, सुकून दिल को मिलाता हो चाहत वही है। हमें हाल दिल भी बताना ना आया, तुम्हें भी हमी से शिकायत वही है। मिला जो सहारा सफर में तुम्हारा, मेरी जिंदगी की अमानत वही है। चलो छोड़ आए पुरानी कहानी, भुला दे गमों को मोहब्बत वही है। सफर को सुहाना बना के चले हम, मिलेगी हमें भी नजारत वही है। अगर साथ दे दे कोई भी कहीं पर, भले हम न जाने इनायत वही है। चलो छोड़ आए अदावत कहीं पे, दुआ माधवी की सलामत वही है, दुआ माधवी की सलामत वही है।

लेते हैं कुछ और कविताएं। काव्य संग्रह रेत की नदी से डॉक्टर माधवी गणवीर जी लिखती हैं, पास आकर जरा मुस्कुरा दीजिए, जिंदगी खूबसूरत बना दीजिए, यूं ही चुप ना रहो यार, कुछ तो कहो, बात दिल की कभी तो बता दीजिए, खिल उठेगा चमन मेरे दिल का सनम, आप अपना हमें घर पता दीजिए, आज महफिल सजी है तुम्हारे पिया, एक नई फिर गजल तो सुना दीजिए, बात बीती बिसारी उन्हें छोड़ दो, ख्वाब आंखों को कोई नया दीजिए, गाव नासूर ये बन न जाए कहीं, जख्म पे आज मरहम लगा दीजिए, जो तुम्हारा कभी बन ही सकता नहीं, यार छोड़ो उससे तुम बुला दीजिए, बेवफा बेवफा ही रहेगा सदा, चाहे दौलत जहां की लुटा दीजिए, काम आए मुसीबत में जो माधवी, दिल से उनको हमेशा दुआ दीजिए, दिल से उनको हमेशा दुआ दीजिए। एक और कविता में डॉक्टर माधवी गणवीर जी लिखती हैं, मुकद्दर आज जो रूठा हुआ है, सितारा फिर कहीं टूटा हुआ है, दगा करके गया है कोई अपना, चलो हम मानते अच्छा हुआ है, लुटा है आशियां मेरा यहाँ पर, अंधेरा दर्द का बिखरा हुआ है, जरा अपनी खुशी से गालिए हम, गजल से बागबां महका हुआ है, दिखा मुझको तेरा साया यहाँ पर, मेरी नजरों का फिर धोखा हुआ है, कोई मुद्दत गया परदेस बेटा, अभी तक माँ का दिल बैठा हुआ है, कभी तो रूबरू आकर मिलो तुम, मिले ख्वाबों में भी अरसा हुआ है, सुनाई माधवी ने आप बीती, जहां का चेहरा जो बीगा हुआ है, जहां का चेहरा जो बीगा हुआ है।

डॉक्टर माधवी गणवीर जी की कुछ कविताएं इसी काव्य संग्रह से रखता हूं। वो लिखती हैं, प्यार का दीप मन में जला लीजिए, उम्र भर जिंदगी का मजा लीजिए, रूठ कर कोई जाए न तुमसे कभी, हर बशर को ही यारो मना लीजिए, खत्म हो जाएंगी दूरियां बीच की, रंजिश आज मन की हटा लीजिए, बाग खुशियों से पल में महक जाएगा, नेक दिल एक साथी बना लीजिए, चैन मिलता नहीं यार खोकर जमीर, चाहे कितनी भी दौलत कमा लीजिए, इश्क का सबक सीखिए तो जनाब, आंख मुझसे तो आओ लड़ा लीजिए, है सुकून ही बहुत ये कहे माधवी, एक पल तो किसी का दुआ लीजिए, एक पल तो किसी का दुआ लीजिए। एक और कविता में डॉक्टर माधवी जी लिखती हैं, अब नहीं कम में गुजारा चाहिए, बाजुओं का हक तो सारा चाहिए, बीख में मोती नहीं मंजूर है, ना रहम का ही सहारा चाहिए, आसमां में छेद कर दूं आज मैं, बस मेरे रब का इशारा चाहिए, क्या हताशा क्या निराशा मैं करूं, साथ पर मुझको तुम्हारा चाहिए, हर तरफ हो प्यार का साया सदा, खूबसूरत वो नजारा चाहिए, फिर जन्म हो तो ये हरी है प्रार्थना, हिंद में ही फिर दोबारा चाहिए, माधवी की चाह है सबसे जुदा, रोज खुशियों का पिटारा चाहिए, रोज खुशियों का पिटारा चाहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला जारी है। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं कविताएं जिनको अपने शब्दों से प्यार से संवारा है डॉक्टर माधवी गणवीर जी ने। लेते हैं इनके एक और काव्य संग्रह से कुछ गजलें। बहुत सोचना दिल लगाने से पहले, मोहब्बत की रस्में निभाने से पहले, मेरी याद दिल से मिटाने चला वो, मगर सोच लेना बुलाने से पहले, सदा खुश रखेंगे ये खाई थी कसमें, जरा सोच लेना रुलाने से पहले, नहीं होती आवाज लाठी में उसके, यही सोचना दिल जलाने से पहले, मिटा है सदा दिल तुझी पे ये जाना, सनम देखना पग बढ़ाने से पहले, मिलेगी न मंजिल तुम्हें इस जहां में, नए ख्वाब अपने सजाने से पहले, सलामत रहो माधवी की दुआ है, यही मांगती जान जाने से पहले, यही मांगती जान जाने से पहले। डॉक्टर माधवी गणवीर जी एक और कविता में लिखती हैं, इश्क में आज हद से गुजर जाएंगे, साथ दे दो जरा हम संवर जाएंगे, हाथ में हाथ तेरा सदा जो रहे, एक दिन आएगा यूं निखर जाएंगे, हाल दिल का जरा पूछ लो तुम कभी, देखना हम वहीं मुस्तकर जाएंगे, साथ मिलता रहे हमें सनम का सदा, इस जहां से हम बाहुनर जाएंगे, हर गजल में फतह मिल रही है आजी, वक्त के साथ हम भी निखर जाएंगे, भूल जाऊं तुम्हें कामना तो नहीं, जो मुकदर कहें कर गुजर जाएंगे, खेल में जीत भी हार भी है बनी, सोच कर तो नहीं हम बिखर जाएंगे, है दुआ माधवी की सदा तुम बढ़ो, साथ हम भी तेरे हम सफर जाएंगे, साथ हम भी तेरे हम सफर जाएंगे।

लेते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी दो गजलें काव्य संग्रह फूल सी गजल से। डॉक्टर माधवी गणवीर जी लिखती हैं, खताएं मेरे तुम गिनाते रहोगे, भला कब तलक यूं सताते रहोगे, डगर ये कठिन है मगर राह चलना, दिलो जहां हमें पे लुटाते रहोगे, जरा रूठ जाए सनम हम कभी तो कहो यार कब तक मनाते रहोगे, तुम्हें दिल दिया है खबर ही कहां है, मुझे कब तलक आजमाते रहोगे, सजा दूं मैं अर्थी तेरे नाम की तो खता ये बला क्या बुलाते रहोगे, कसम है तुम्हें जो मिटे हो अदा पे वही नाज नखरे उठाते रहोगे, कहीं हो

यहाँ पर आया बताएं किससे। गीत गजलें हम ही थे, तराने हम ही, टूटती सांस है गुनगुनाएं किससे। रात का है अंधेरा बड़ा ही घना, तू बता जिंदगी अब डराएं किससे। ये शिकायत सदा ही करे माधवी, सारे अपने ही रूठे मनाए किससे। सारे अपने ही रूठे मनाए किससे।

ये था आज का वितस्ता गीतमाला का एपिसोड 10। आज हमने आपको डॉक्टर माधवी घनवीर जी की लिखी कविताएं गजलें सुनाई, उनके काव्य संग्रह रेत की नदी और फूल सी गजल से। डॉक्टर माधवी जी आपका आभार, आपने हमें ये काव्य संग्रह भेजे। ये कार्यक्रम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की ओर से आपको सादर भेंट। आप सभी श्रोताओं, आपको ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मैं भारत सोपोरी आपसे चाहूंगा इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 10। कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट, निर्देशित व प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। आज का कार्यक्रम आधारित था डॉक्टर माधवी गणवीर जी के गजल संग्रहों रेत की नदी और फूल सी गजल पर, सहयोग निया जैन और राहुल अलियान का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: गवाही बड़ी। अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो विस्ता, हम सफर जिंदगी का।

घर रुके थे कदम, पर सफर तवील था। मुख्तसर सी चांदनी सफर के दौरान हम सफर बनी। ठगा ठगा सा मौसम, अंगड़ाइयां लेती ये हवाएं, नाजुक यादों को अपनी पनाहों में शामिल कर मुझे रास्ता बताते, सफर को खुशनुमा बनाते, माजी के पलों को लौटाते, जो मैं उनसे लिपटता, उनको छू जाता, उनकी खामोशी तोड़ता, फिर मैं कहता, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही मेरी इबादत में

कुछ मौसम में ये कैसी बेचैनी है। शायद उनकी आमद का पैगाम लेकर आई है ये हवा। सदियों के फासले पल भर में मिट जाएंगे, इसका भरोसा मत करना, क्योंकि हर बार दस्तक दे चुकी है वो मेरी दहलीज पर, वो जो अपना हाल दिल बयां करने के लिए बरसों से बेताब है। शायद इसलिए यह मौसम की बेचैनी मेरे सफर में शामिल है। दश्ती तन्हाई से दामन छूटा जा रहा है, मेरी बेखुदी अब तू ही संभाल मुझे।

अब बेहतर है मौसम खिजा में चिनारों से गिरते इन पीले पत्तों को जलाया जाए और इस आग की तपिश में झुलस जाए। जिस्मों का क्या है, चलते हैं, ढलते हैं, जलते हैं, रूह लाफानी है, सिर्फ पोशाक बदलती है। जिस्मों का क्या है, चलते हैं, ढलते हैं, जलते हैं।

रास्ते हैं दुश्वार पर मंजिल है करीब। दौराने सफर जो मिले वो छूट गए, रह गए पीछे अपनी यादों के साथ। माना यादें जिंदगी का अहम सरमाया होती हैं, पर इसके बावजूद मैं जानता हूं कोई क्यों याद करे किसी को, जब जिंदगी के इस तबील सफर में रिश्तों ने अलविदा कहा हो। मुझे चुपचाप देखा जाता नहीं, अगर तेरे बस में हो तो आके मेरी तकदीर बदल दे। मुझे चुपचाप देखा जाता नहीं, अगर तेरे बस में हो तो आके मेरी तकदीर बदल दे।

मौसम है तुम्हारी यादों का, हमें बिछड़े हुए कई युग बीत गए। इन सावन की बारिशों में भीगने का मंजर आज भी आंखों के सामने ठहर जाता है। अब जब कई सावन आए और आके चले गए, पर इन भीगती हुई बारिशों में तुम्हारे मुस्कुराने का सावन न जाने क्यों खामोश हो गया। हमसे मिलता तो होगा हूबहू अंदाज उनका, हमसे मिलता तो होगा हूबहू अंदाज उनका, तुम्हें पूछने वाले लेकिन हम जैसे ना होंगे।

कुछ तो सपने थे और कुछ हकीकत। रास्ते तो थे पर बीच रहा हम सफर खो गए। पल भर में यहां मौसम बदलते गए और तर करते रहे मेरी आंखों की खामोशी। इस काले घने धुएं में तुम्हें से मिलने की जुस्तजू बरकरार रही और रात भर जलते रहे बुझते रहे रोशनियों के दिए। फिर धीरे धीरे मेरे तुम्हारे रास्ते सिमट गए। अब गुमनामी की इन बस्तियों में तनहा पत्थरों को तराश कर क्या हासिल।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। हम बात करते हैं अम्बाला की, और अम्बाला को विश्व पटल पर रखना चाहते हैं, जिसमें आप सभी श्रोताओं का सहयोग और प्यार और स्नेह बहुत जरूरी है। हम उन श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं, चाहे वो कार्यक्रमों के बारे में हो या सुझाव हो। हमारी टीम उन सुझावों पर काम करती है और कोशिश करते हैं कि हम उन सुझावों को भी लागू करें जो हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से पॉसिबल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:02:19। गुजरते वक्त के साथ आज का ये प्रसारण भी अपनी मंजिल तक आ पहुंचा है। उम्मीद है इन लम्हों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपकी शाम में थोड़ी रौनक भर दी होगी। दोस्तों, आज बात करते हैं एक बेहद प्रेरणादायक विषय पर। आज का विषय है मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, यानी देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ टू गेट सक्सेस। जीवन में चाहे कितनी भी प्रतिभा, संसाधन या किस्मत साथ क्यों न दे, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए निरंतर परिश्रम और लगन की जरूरत होती है। जो लोग मेहनत से जी नहीं चुराते हैं और हर परिस्थिति में डटकर काम करते हैं, वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एक उदाहरण हमने बचपन से सुना है कि अगर पानी भी निरंतर एक पत्थर पर गिरता रहे तो पानी भी पत्थर पर अपना निशान छोड़ जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसे ही हमें निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। अक्सर हम शॉर्टकट या आसान रास्तों की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो नींव मेहनत और ईमानदारी से बनती है, वही सबसे मजबूत और टिकाऊ होती है। सफलता चाहे देर से मिले, पर जो मेहनत के दम पर मिलती है वो स्थायी होती है, और इसमें और उसमें एक अलग ही संतोष होता है। दोस्तों, आइए हम सब ये सीख लें कि किस्मत या मौके का इंतजार करने के बजाय अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखें, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हां दोस्तों, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, ये था आज का विषय, और हर दिन आपके लिए 4 पंक्तियां लाता हूं, आप सभी को समर्पित करता हूं ये पंक्तियां। आज की पंक्तियां यूं है, रुकना नहीं थकना नहीं बस चलते रहना है, रुकना नहीं थकना नहीं बस चलते रहना है, वितस्ता की धारा सा निरंतर बहना है, वितस्ता की धारा सा निरंतर बहते रहना है, मंजिलें मिलती हैं उन्हें कदमों को आखिर, मंजिलें मिलती है उन्हीं कदमों को आखिर, जिन्हें हर मुश्किल में भी आगे बढ़ना आता है। जी हां दोस्तों, जिन्हें हर मुश्किल में भी आगे बढ़ना आता है। दोस्तों, ये 4 पंक्तियां आप सभी के नाम, मुझे बहुत खुशी है कि ये पंक्तियां आज रेडियो वितस्ता के इस सफर को भी बयां करती है। एक व्यक्ति 36 साल पहले कश्मीर से अम्बाला आया और एक सोच बनाई कि अम्बाला को क्या दे सकते हैं। अम्बाला ने मुझे बहुत कुछ दिया और मेरी कोशिश ये थी कि मैं अम्बाला को क्या दे सकता हूं। निरंतर इस पर काम किया, हमने थिएटर ग्रुप बनाया, हमने मंच पर 16 से ज्यादा प्लेज किए, 170 कलाकारों को मंच दिया, जिनमें अभी कुछ कलाकार राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। आशा करता हूं कि अगर आपने नेटफ्लिक्स पे सफेद सागर सीरीज देखी होगी, उसमें वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी का एक कलाकार एक पायलट के रूप में आपको दिख जाएगा। हमें बहुत गर्व है इस चीज का कि अम्बाला ने ऐसे कलाकारों को तैयार किया। तो दोस्तों, ये था आज का विषय, और जाते जाते आपको विवरण देता हूं कल के कार्यक्रमों का। कल 23 सितंबर 2026 बुधवार को कार्यक्रमों की शुरुआत होगी 5:58 पर वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह, और सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत, कल बुधवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी।
7:05 पर होगा कार्यक्रम नारी एक दर्पण एपिसोड 3, पेश करेंगे आरजे सेजल। 8:30 आप हर दिन सुनते हैं सकारात्मक कहानियां, कल एपिसोड 3 होगा हकीकत जिंदगी के, इस कहानी को प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 होगा कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2, मोहम्मद रफी साहब पर तैयार किया गया ये कार्यक्रम, पेश करेंगे आरजे किरणी। और 10:30 फादर्स डे स्पेशल होगा, पेश करेंगे आरजे सेजल। संगीत की सभा जारी रहेगी, बुधवार को आप सुनते हैं रिपीट ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, जो हमने पिछले शुक्रवार को दिन के 2:00 प्रसारित किया था। कल आप सुनेंगे 18 सितंबर 2026 का प्रसारित किया गया कार्यक्रम पुनः प्रसारण में आपकी फरमाइश दिन के 2:00। 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल और 7:00 होगा कार्यक्रम सकोनीय मौसीकी, पेश करेंगे नरेश शर्मा। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है कब आओगे तुम। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी हमारी टीम रेडियो वितस्ता की कैजुअल अनाउंसर अनु ने तैयार की, जो मैंने आप तक पहुंचाई। और साथ में आने वाले दिनों में हम अंबाला के इतिहास के बारे में और अंबाला की तरक्की और उन्नति के बारे में भी कुछ बाइट्स तैयार कर रहे हैं, जो आप सुनेंगे रेडियो वितस्ता एफएम 90.0 पर। तो दोस्तों, बातचीत के इस सिलसिले को यहीं देते हैं विराम, वक्त आ गया है और भरोसा है कि यह प्रसारण आपके साथ यही इसी चैनल पर रहेगा और आपके दिन को थोड़ा मिठास भी घोल दिया होगा। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा। एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए हर दिन सुबह 6:00 से रात के 9:00 तक। तो कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।